0: इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम वल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजूमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक we bring to you a santoor recital by Rajkumar Majumdar. Rajkumar Majumdar is one of the most versatile santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जन सम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with rag Jan Sammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 14 सेकेंड। तो आप तमाम सुनने वालों को आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गई। आज की शाम हम आपको ऐसे ही मौसिकी के सफर पर लेकर चल रहे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक नगमे हैं और पहला नगमा एक ऐसा नगमा है जो आपको हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज भी सुनते ही चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आता है। दरअसल आज का वो दौर नहीं है, वो दौर था बहुत पुराना 60-70-80 का वो दशक जब खतों के जरिए हमारी बातचीत हुआ करती थी। दरअसल ये वो दौर था जब खतों के जरिए बातचीत और एक दूसरे को मिलने और पैगामात पहुंचाने के एक बहुत ही खूबसूरत जज्बों के साथ खतें भेजी जाया करते थे और एक सिलसिला शुरू होता था बातचीत का उन खतों के जरिए उन खतों के माध्यम से और फिर वो सिलसिला मोहब्बत में बदलता था। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस सफर में और आज के इस सफर का आगाज करेंगे ऐसे ही खूबसूरत नगमे के साथ और वो नगमा है 1968 में आई फिल्म कन्यादान के एक बहुत ही खूबसूरत गीत से जिसको बहुत ही खूबसूरती से गाया है मोहम्मद रफी साहब ने और इस गीत को लिखा है नीरज साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में यह नगमा।

कन्यादान फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं इस वक्त आप। और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में बात अब एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि अभिनेत्री हेमा मालिनी के करियर में एक अहम मोड़ भी साबित हुई, और वो फिल्म है 1971 में आई अंदाज। यह फिल्म उनके अभिनय सफर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। यह वो दौर था जब शमी कपूर साहब का स्टारडम थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन उनके शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा। यह फिल्म उनके करियर की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई और इसमें उनका किरदार भी उनके बाकी रोल से काफी अलग और खास माना जाता है। वहीं राजेश खन्ना साहब की खास मौजूदगी ने इस फिल्म की सफलता में एक अहम किरदार अदा किया। यह फिल्म उनके लगातार 17 हिट फिल्मों के सिलसिले का हिस्सा भी बनी। फिल्म की एक और खास बात यह रही कि अभिनेता अजीत का रोल, जिसमें उन्होंने एक संवेदनशील किरदार निभाया था जो उनके आम किरदारों से बिल्कुल अलग था, जिसको दर्शकों ने भी काफी सराहा। इस फिल्म का एक और सुपरहिट नगमा है, एक बेहद खूबसूरत इस फिल्म का एक नगमा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिसको किशोर कुमार साहब ने अपने खास अंदाज में गाया था। इस गाने ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि आज भी जब जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती हैं या जिंदगी की मुश्किलात की बातें होती है तो ये नगमा हमें बहुत ही ढांढस बनाता है, हम सब इसे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस गाने के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर के अवार्ड के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकन भी मिला, मगर उनको यह अवार्ड नहीं मिल पाया। लेकिन इसी गीत के लिए हसरत जयपुरी साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के अवार्ड से नवाजा भी गया था। तो आइए इसी फिल्म का एक दूसरा बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, जिसको लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में

एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक फिल्म की। आज बात करेंगे उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1981 में आई फिल्म सिलसिला की। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा साहब ने। खास बात यह है कि यह फिल्म एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी विवाहोत्तर संबंध पर आधारित थी, जो उस दौर में हिंदी सिनेमा के लिए बिल्कुल नया विषय था। इस फिल्म की कास्टिंग भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। अमिताभ बच्चन साहब, जया बच्चन और रेखा, इन तीनों को एक साथ लाना अपने आप में बड़ी बात थी। दरअसल उस दौरान अमिताभ बच्चन और रेखा जी के रिश्ते को लेकर मीडिया में काफी चर्चाएं चल रही थी, जिसने फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा में ला दिया था। यश चोपड़ा साहब ने खुद कहा था कि इन तीनों को कास्ट करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहले रेखा और जया बच्चन के रोल के लिए दरअसल परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को चुना गया था, लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन साहब के सुझाव पर रेखा और जया को ही फाइनल किया गया। दिलचस्प बात यह भी है कि रेखा जी ने इस फिल्म में अपने कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी खुद डिजाइन की थी। फिल्म की शूटिंग कश्मीर से शुरू होकर विदेश, मुंबई और दिल्ली तक चली। यश चोपड़ा ने मीडिया से दूर रहकर पूरी फिल्म को प्राइवेट तरीके से शूट किया। उन्होंने इसे रियल लाइफ का रियल लाइफ में आना बताया था। यश चोपड़ा साहब का मानना था कि दर्शकों का ध्यान कहानी से ज्यादा विवादों पर चला गया था, जिस वजह से यह फिल्म कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाई। लेकिन इसके बावजूद यश चोपड़ा साहब ने एक इंटरव्यू में इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया था। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में 3 अलग अलग श्रेणियों में नॉमिनेशन भी मिले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, मगर इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिल पाया। सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड की उन कहानियों में से एक है जो रील और रियल लाइफ के बीच की लाइन को मिटाती हुई नजर आती है। इस फिल्म के गीतों को बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा था शिवहरी साहब ने, और गानों के बोल लिखे थे जावेद अख्तर, निदा फाजली और हरिवंश राय बच्चन जैसे दिग्गजों ने। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए जावेद अख्तर साहब का बतौर गीतकार पहला नगमा था। तो आइए जावेद साहब के लिखे उसी पहले गीत को सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हर श्रृंगार के इस दिलकश महफिल में।

किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म सिलसिला का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हर सिंगार की यह महफिल और हर सिंगार की इस महफिल में अगला नगमा 1975 की एक बेहद खूबसूरत फिल्म से। हम बात कर रहे हैं साल 1975 की एक ऐसी ही सुपरहिट फिल्म की जिसने उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम किया और वो फिल्म थी राज खोसला साहब के लेखन और निर्देशन में आई फिल्म प्रेम कहानी। इस फिल्म में अपने दौर के बड़े नामचीन सितारे शशि कपूर, राजेश खन्ना और मुमताज मुख्य किरदार में थे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से कहानी को और भी खास बना दिया था। इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, जिनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। और सबसे खास बात, प्रेम कहानी साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक तो रही ही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। एक ऐसी फिल्म की कहानी जो अपने नाम की तरह ही प्यार और इमोशन से भरपूर है। इस फिल्म का एक बेहद खूबसूरत और सदाबहार नगमा जिसके बोल की नजाकत आपके दिल में उतर जाएगी, जिसको गाया है लता जी और मुकेश साहब ने। इस गीत के नगमा निगार हैं आनंद बख्शी साहब और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का।

0: مکیش صاحب اور لتا جی کی اسی آواز کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے ہر سنگار سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا گیت میرے من میت کی اس محفل میں ٹھیک 11:10 پر. تب تک کہ مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ. राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई. इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है. प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी. तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया. हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है. चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है. 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी. हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है. इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं. चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे. वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे. श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे. दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा. चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है. साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया. भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी. भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमटीआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat of perceptions. In archery, India Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player cum coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.